चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर

नन्नी चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्नी चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में, फिर किस

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Hi, Judy, aren't you trying this? It's very nice. Have more. Hi, Sheva.
2: Hi.
1: आप खा रहे कि नहीं खा रहे?
3: जी नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ।
1: डाइटिंग? लगता तो नहीं।
3: Hey!

गुलाबी रात के साए तले इन मासूम बच्चों की रात कितनी भयानक है, कितनी काली है।

बचपन भूता हो, फिर उसकी जवानी क्या होगी, फिर उसकी जवानी क्या होगी।

जब भी देश की बात होती है ऐसे लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ये लोग जो पीते हैं वो शराब नहीं, अनगिनत लोगों का खून है। और आज जब बच्चे भूख से पिलकते हैं तो ऐसे लोग अनाज पांव तले कुचलते हैं। ऐसे फूल इनके हाथों कुचले जाते हैं, मसले जाते हैं। लोगों के पास तन ढकने को कपड़ा नहीं और इन्हें तन ढकने का शौक नहीं। ये गुलाबी रात वाले काली रात के जिम्मेदार शबाब और शराब के नशे में चूर, मखमल के बिस्तर पर सोने वाले इतना भी नहीं सोचते कि आज इन्हीं की रक्षा के लिए इनके अपने भाई

0: Zo, ja, en blijft allen afgestemd.
1: Live vanuit de Hoogstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और अदा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे, आज शुक्रवार 8 तारीख मई का प्रोग्राम। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए।

आज शुक्रवार 8 तारीख मई का प्रोग्राम जो आप लोग सुनेंगे दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम देने वाले हैं। करीबन 10 मिनट व्यतीत हो चुका है 9:03। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज आप लोग सुनते हैं वहां तक हम आप सभी को आज सुबह का प्रोग्राम में स्वागत कर रहा हूं। उजाला रेडियो का दफ्तर आज के सुबह में 10 बजे से खोले जाएंगे दिन में 3 बजे से फंतीन तोद्री जहां का फोन का नंबर है 9204090807 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए। उजाला रेडियो का वेबसाइट का पता है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी भी आपको मिल सकेगा।

और हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए प्रोग्राम को भी बहुत प्यार के साथ। दरहाख शहर में भैया आनंद जग्गू जी प्रोग्राम को सुन रहे, तो ये गाना तुम्हारे नाम कर देता हूँ सेज आत्मा जी की आवाज में।

वल अजरे अजरे वो सनम और इस तरह से ये चात्मा की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे और युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम देखा जाए जनहाशर में भी भाई रखे इस प्रोग्राम को बैठकर सुने खुद मूर्ख गुड मॉर्निंग यार युवा उजाला रेडियो का प्रोग्राम वीकेंड का प्रोग्राम यार ओ,

दिल की बातें यार, दिल की बातें तो दिल में रह जाते हैं। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी, और देखा जाए भी उस तरफ आकर में भाई हैंग गोपी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। और इस गाना को चलिए हम आप दोनों के लिए बजा देते हैं, और खास करके बहुत ही प्यार के साथ अपन लिफ लिफ फ्रउआ के लिए यार। लता एंड कुमार शानू जी की आवाज में

दिल कहे हम सफर तेरा हर एक मोड़ पर, लता एंड कुमार शानू जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। हम तो लोग से बता दें कि एपोआ अंदर आई गए कोकन अतिस फ्राइडा अतिस भाई ना वीकेंड और दरहाशर से राकेश पठाई से बोले भाई सुभाष आज बनेगा मुर्गा या हर्द किप खूब तीता तीता और कौशबांध लेकर भैया एच स्मैकलट वेल मुंह से पानी चुआ दी भैया सवेरे सवेरे हर्द किप बनाएगा यार मुर्गा खूब तीता तीता खूब लुटपुटा रे। और देखा जाए मानो भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हो दौर में अपने श्रोश के लिए गाना

तेरे तेरे बिना यार ये दिल धड़कता नहीं यार, तेरे बिना ये दिल लगता नहीं। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी। चलिए अब की बार देखा जाए राजेश बनारसी भाई, राजेश बनारसी काम पर है एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम बैठ करके सुने है, न बैठ कर सुने काम करे और सुने है, या तो चाय या तो कॉफी के साथ अगर आप बैठे हुए हैं, या तो आप लोग ऑन बैठ करते होंगे तो स्वादिष्ट ऑन बैठ कीजिए चाय या तो कॉफी के साथ। एंड भाई राजेश बनारसी काम पर है एंड उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुने हैं।

यार तेरे बिना ये दिल जो है ना, तो तेरे बिना ये दिल बहुत ही मुश्किल है। और से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम देखा जाए, बेल्जियम में सुनीता भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने ही। तो सुनीता ये गाना तुम्हारे लिए।

बार रात भर तेरा नाम लिया। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, अतिश बैना वीकेंड और मोई वेरबा, अतिश मोई लकर वेरियार। और आप सभी को, आप सभी सुनने वालों को फैन वीकेंड तू खवेंस हमारी तरफ से। जो भी वीकेंड में आप लोग करेंगे प्यार से दुलार से कर लेना, वीकेंड तो चाहे जो ची करिए प्यार से दुलार से करिए यार।

बल यार तेरा तेरा नाम लिया, तुझे तुझे हर पल पुकारू यार। और कई समय पठाई से एप खुद मूर्ख और बोले आज का रेसिप फन केस इज विद बेरी खरनालन और उर्दी के दाल खूब तीता तीता। आई बॉय अश्विति यार तो इस झिंगा बनाएगा किस विद बेरी खरनालन मेट उर्दी के दाल अश्विति यार कोक्स अलमाल एन फॉर स्ट्रक्चर्स एट यू अलमाल मोई से खाइए एट यू स्मैकलक अलमाल। सवेरे सवेरे ये बेल रेसिप मिले है तो इस वेल लेकर हो दरहा शर मेरा केस बनाएगा हार्द के मुर्गा खूब चीता चीता कौश बांध के साथ। और सवेरे सवेरे चाय या तो कॉफी बैठ करके आप लोग पीते होंगे तो स्वादी से कीजिए या तो आप लोग ऑन बैद करते होंगे मौज से करिए यार। और हमारे प्यारे सुनने वालों ठीक है 10 बजने वाले हैं आतिश भाई ना 3 Het is vrijdag 8 mei en het is lekker weer. Ham nani tor kaiti kaise ba? Dat weet ik niet. Maar yahan par jahan par hum baati, moi se gham niksal ba. Aur Ujala Radio aap log ke saath hai. Ya to hum aap log ke saath hai. Ayaya. Na de reclame, na de break ben ik weer terug. कहीं पर ना जाइए यार। और उजाला रेडियो का दफ्तर भी खोले गए हैं जहां का फोन का नंबर है 0 3 0 9 0 0 7 पर आप उतार कर सके हैं जो भी आपको पूछना है जो भी कहना है। ऑल इज वेलकम।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं और शुक्रवार 8 मई का प्रोग्राम चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं सुनते ही जाइए, दिन में 12 बजे तक आप लोग के साथ हम रहेंगे। और उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 9 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके। और उजाला रेडियो का वैसे आपका फोन का नंबर है 9 20 3 6 3 0 8 0 8 पर, या वेल 9 20 3 6 3 0 8 0 8 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके दिन में 12 बजे तक। Het is bijna weekend, mooi zonnig weer maar. और दिमन शहर में चलिए फौसिया भी प्रोग्राम को बढ़कर सुने। फौसिया तो ये गाना तुम

और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, और देखा जाए आमेर शहर में जहां पर इस वक्त माला मुंगार जी भी प्रोग्राम को बैठकर

तेरी एक नजर एन दिल तुझे मान लिया सनम, आयुष तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुन रहे थे। चलिए अब की बार तो गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो फैंस फोल्डर में देखा जाए एमी जी प्रोग्राम को बैठ कर सुने। तो एमी जी ये गाना तुम्हारे नाम। और चलिए जो गाना हम आपके लिए सुनाना चाहते ये होना चाहिए सेज आत्मा जी की आवाज में।

वेल यार, जीवन जीवन एक अधूरा सपना है, कुछ देखा है एंड कुछ बाकी है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने सेएच आत्मा जी की आवाज में। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो देखा जाए होफदोरप में आनंद मंगरू जी प्रोग्राम को बैठकर सुने।

तेरी चाहत में है जिंदगी, तेरी खुशबू में है तेरी चाहत। आओ इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और देखा जाए शाला भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। खुद मोर्ख

बाल यार रप कर रही है तुझसे दिल ये जुट जाए और तेरी दुनिया बस यार बस बस बस यार खाली प्यार बोले और बिजली सारा बोले करके जैसे मेरे दिल में हाय बॉय और देखा जाए सत्य भी प्रोग्राम को सुने हैं वाली सब गरुण सुन के जाने दिल और मचले लगे हैं और जैसे वीकेंड बहना बात और खुशी हो गए है कि बहना वीकेंड बा और ये सब गाना सुन के दिल में खुशी हो जाते हैं यार दिलवा जैसे पागल हो जा है

वल यार तेरे इश्क में पागल हो गया, एन दिलवा अब क्या करे यार, दिलवा इतना प्यार करे है। और जैसे रेमी बोले कि उजाला अख्तर ग्राउंड पर है, बैकग्राउंड पर है, और बोले कमुआ हली अली हो जबल रेमी वैरक्स। और हुर्रचर में चंद्रा और शौकत भी प्रोग्राम को सुने हैं।

पल यार इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने तेरे प्यार में बोले पागल हो जाऊं बोले दिल में एंड हमें को बात बोली तो समाइल बोले कि दिलवा सब चीज करे दिलवा सब चीज करे चाहे तू मान या तो ना मान दिल है तो दिल है। तो चलिए अलमेरे में सुनीता और रूबेन प्रोग्राम को बैठ करके सुने प्यार के साथ।

चल यार, बोले खुदा से मांगा है तुमको ओ सनम। वाओ कितना मोई गाना, बोले खुदा से मांगा है तुमको ओ सनम। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, 10 मिनट बाकी रहा 11 बजे में, 3 मिनट फॉर 11 और बरेडा शहर में श्रीमान और श्रीमती बिहारी भी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं। खुद मोर

यार, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने कुमार शानू एंड अलका याग्निक के आवाज में। वेल देखा जाए, मीला कट्टू सिंह फैंस पोल्डर में प्रोग्राम को सुने हैं, बोले हम सुनी लो और बोले तू सोच सके है उका करे पकावे है तो लिखने नहीं क्लब जरा सोचो बाकी ना लिखिस की का पकावे है, आई बोई ना बताए इसकी का बनावे है का खाएगा ना लिखिस आएगा आई बोई। करीबन 5 मिनट बाकी रहा 11 बजने में।

चल यार तू ही मेरा सहारा। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने राहुल करीबन ने करीबन एक मिनट बाकी रहा 11 बजे में एचएस बैंड ना एलो फिर यार एचएस बैंड ना वीकेंड। आप सभी को मोई वीकेंड, मोई वीकेंड तो लोग बिताइए अपना मोई वीकेंड, तो अपने आप के जरूर से ख्याल कीजिए।

हम आप लोग से बता चुके हैं अतिस मोई वेर अतिस लेकर वेर यार अबे बाहरे ना गेली बाटी महिया से वेरवा देखा इतना मोई चटक घाम निकल बा और ऊपर से वीकेंड आई गए है और सब कोई पकावे है जैसे मेला भी पकावे है एक कहती वो ज्यादा रेडियो सुने है और एक कहती पकावे है देखिए कुछ जर ना जाए आई बॉय तो बोलिए सुभाष तोर कसूर है हाँ हमें कसूर सही कर दे सके समय सलत वेल खुद हो चाहे जो ची कर देंग खुद ना ओके नाद ब्रेक नाद रखला

रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं और वीकेंड रेडियो या वेल सुभाष के साथ वीकेंड रेडियो उजाला रेडियो आई बॉय द बेस्ट वन अमस्टरडम शहर से प्रोग्राम को हम बना रहे हैं आप सभी के लिए।

Our Caribbean 7 minuten bij het huisje collega 11 bajker 7 minuten over 11. Goedemorgen allemaal. Our kitna mila apan kamper bhi program ko badhkar sunen Ujala Radio ka program. Our chori chori chupke chupke. Jawel stikam stikam yaar. Tab to bole kamua halyali hoy. जैसे कोई पकावे हल हली काम होवे कोई घर के काम करे है चाहे जो ची आप लोग करत हो ये यार प्यार से दुलार से तो चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे ये गनवा चाहे जितना जाय जाय सुनिए चाहे हजार जाय सुनिए इतना मोइबा तेरा चेहरा

चल ये जमीन भी रुक जाए या आसमान भी झुक जाए, बोले जब तू हमारे नींद में आइए तो मेरा सपना बोले लेके तू चला जाइए। तेरा चेहरा जब नजर में आवे, अन्नाम स्वामी जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

मौल जीते जी कहीं खो जाए, मिलो ना तुम ऐन दिल घबराए। बोले दिल दिल हमेशा यार, हम दोनों से कई जान बताए चुकली कि दिल जो भी करे है तो अच्छा करे, चाहे जो ची करे प्यार से।

जान भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है एंड ये जान भी तुम्हारा है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने और हमारे प्यारे सुने वालों करीबन 20 मिनट व्यतीत हो चुका है 11 बजकर थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ सपनों की चाल। आर एन एम शहर में देखा जाए शारदा भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं खुद मूर्ख है।

दुनिया से दूर मोहब्बत में हम आगे यार, दुनिया से दूर एंड मोहब्बत में हम आगे, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने ठीक 11:30 का वक्त ही हाल्फ ट्वेल्व और देखा जाए और मेरे में आईफी भी प्रोग्राम को बड़े सुने खुद मोर्ख।

तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत रे भर्ग दे भर दे भर दे झोली। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ हम देने वाले हैं करीबन 20 मिनट तक और आप लोग के साथ।

जब से नजर दिल तेरा मेरा हो गया, अब तेरी बातों में वो नशा जो है वाओ, कितना मोय, कितना विशाल गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने। बोले तेरी बातों में वो जो नशा है तो बल दिल बहलाता है, एंड यू आर उजाला रेडियो है

कमाल यार, बोले तू मेरा दिल को पढ़ा था ना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रही थी, यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, और पौने 11 का वक्त है, इट्स क्वार्ट फॉर 12। मिस्टर संजय योद्धा जी,

जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा और हमारा। और इस तरह से संजय योद्धा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, एंड पियानो शहर में परिवार अवतार भी प्रोग्राम को सुने उजाला रेडियो खुद मोरखा।

0: यार, तुमको हमने देखा और हमको और हमने तुमको देखा। एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं रोमांटिक सॉन्ग।
0: और हमारे प्यारे सुनने वालों, देखा जाए तो करीबन 6 मिनट बाकी रहा 12 बजने में। इसका मतलब यह हुआ कि आज का प्रोग्राम एक आखिरी गाना आप लोग सुनेंगे।

हमारे प्यारे सुनो लो, बस तेरी मेरी चाहत का बारिश हो रहा है। और हमारे प्यारे सुनो लो, इसी गीत के साथ हम आप लोग सब इजाजत चाहेंगे। आशा है कि आज का प्रोग्राम जो हमने बनाए और सजाए आप सभी सुनने वालों को पसंद आए होंगे। हमारा साथ देने के लिए, हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। फिर से हम आप लोगों से मिलेंगे आने वाले दिनों में। आप लोग मौज रहिए, अपना वीकेंड तो लोग मौज से बिताइए, मौज से खाइए, मौज से पिए, मौज से रहिए। जो भी आप लोग करेंगे प्यार से

अपना वीकेंड तो लोग मौज से बिताइयो। खिदमत की आपका दोस्त सुभाष शिव गोविंद, मौज रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज़, बाय बाय।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

Jana's Coffee Chai Middagshow. Sunwalo, Aatje, Sukrawar, Sukrawar, Aartarik Mei, 8 Mei. मौसम कितना अच्छा है, घाम निकल रहेगा, वहां न खुद वीकेंड तकमुत देंगे कोर, हाँ, जब घाम आज निकल रहेगा, तब वीकेंड वा और मुई रहेगा। मैं हूँ लॉर्ड महावीर, अन हेल गुड मिडाग अलमा।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: WR.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch staat 10 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk, Plaspoel, Polder en Knoopend Ketelplein 7 kilometer file. Door een ongeluk een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de IJsselbrug geven 3 kwartier vertraging vanaf Duitsland op de A12. Richting Arnhem 10 kilometer file tussen Knoopend Oud-Dijk en Velperbroek. Door gaat in de weg op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन आप उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारों ओर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो उजाला रेडियो आपके साथ
3: चलती है क्या नौ से बारह
4: पुरानी यादों के साथ और सुरीले गीतों के संग बनता है उजाला रेडियो का कार्यक्रम

पाकिस्तान की फिल्माइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है,

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस आई बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: पुष्पण मजे की खाली हो पाकित। अरे नसम में घूमे, अरे हाय हाय, अरे बीबी की कर लाख दुनिया। अरे मिट्टी के भाव जाके, अरे बे जाए, अरे क्या बे जाए भैया
1: सोना।
0: अरे मिट्टी के

ये होते होते अपना ये हाल हुआ, यानी सतीशवा के, अरुणवा के, या विजया के, या फिरसवा के ये हाल हुआ। अरे बिक गए सूत बूत तो क्या रहेगा भैया सतीश।

Daarnaast Coffee Chai Middagshow. Sunwalo, Aatje, Sukrawar, Sukrawar, Aartarik Mei, 8 mei. मौसम कितना अच्छा है, घाम निकल रहेगा, वहां न खुद वीकेंड तकमुत देंगे कोर, हाँ, जब घाम आज निकल रहेगा, तब वीकेंड वा और मुई रहेगा। मैं हूँ लॉर्ड महावीर, अन हेल गुड मिडाग अलमाल।

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file. Op de A2 nog een lange file van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Born en de afrit Maastricht Airport is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt de Oudijk en knooppunt Velperbroek een half uur vertraging door werkzaamheden aan de IJsselbrug. A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij de afrit Numansdorp 20 minuten vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech, daar is ook een rijstrook dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Tilburg Centrum West een half uur vertraging door politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Daar is de afrit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta ki wo jab gaate hain to aisa lagta hai ki koi bahut sachcha imandar bhula bhara aadmi ga raha hai. और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए. कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं.
3: रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मन.
2: मुकेश जी की आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. उनकी आवाज़ की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भाला आदमी गा रहा है. और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए. कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं.

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

हम यहीं पर आपसे इस प्रोग्राम के साथ जुदा होंगे। बहुत जल्दी फिर मिलने के लिए आप ही का मन प्रिय उजाला रेडियो पर।

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: किए।
1: अरे मेरी जान कुछ भी कीजिए पर दिल हमी को दीजिए। और आप सुने लता मंगेशकर और मुकेश जी से फिल्म छलिया का गीत उजाला।

अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, लता जी की आवाज में गीत आप सुने और फिल्म का नाम अभिमान।

तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में आप सुने, और फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

0: ठुमक मत चलो आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। मुकेश जी की आवाज, फिल्म का नाम कहीं प्यार ना हो जाए।
1: चलो आज मत चलो।
2: यू आर,
3: दिस इज Helene de Geest फ्रॉम द ANWB। Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: उजाला सुना चिरैया।

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है बैनी दयाल एंड श्रेया घोषाल। इन दोनों से आप सुने फिल्म गजनी का गीत, और अब हिस्सा लेंगे एक बार फिर श्रेया घोषाल मारदान सोनू निगम के साथ।

और तूने तो पल भर में चोरी किया रे मोराजिया, पल भर में चोरी किया मोराजिया। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, इन दोनों से आप सुने फिल्म दबंग का गीत है। दबंग एंड नोख अंकेर श्रेया घोषाल जावेद अली के साथ।

नहीं सुनने वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: उजाला रेडियो देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: You are. Ujala Radio Headlines. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Daarnaast Coffee Chai Middagshow. Sunwalo, Aatje, Sukrawar, Sukrawar, Aartarik Mei, 8 mei. मौसम कितना अच्छा है, घाम निकल रहेगा, वहां न खुद वीकेंड तकमूत देंगे ही कोर, हाँ, जब घाम आज निकल रहेगा, तब वीकेंड वा और मुई रहेगा। मैं हूँ लॉज महावीर, अन हेल गुड मिडाग अलमाल।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।